नम दादी को तक जन को कुप तक ते कुप तक ते तद दिन को तक जन को तद दिन कर तक तद दिन तंग तद दिन तंग तद दिन न तंग कर तक तद दिन न तंग तद जन तक दिन नम दादी को तक जन को कुप तक ते कुप तक ते तद दिन को तक जन को तद दिन दान दान तक ते तक ते तक ते देके तक तक ते न दान दान तक ते तक ते तक ते देके तक तक ते न तक दिम दिम तक ते तक ते दिम दिम तक ते तक ते दिम तक ते दिम तलांग चोम कर तक कर तोम तलांग चोम कर तक कर तोम तलांग चोम कर तक कर तोम तक तत जम तक दिम्मि तक तत जम तक दिम्मि तक तत जम तिमि तत्तरि केट तक तक तत जम तरि तत्तरि केट तक ताकु तजम दरित तक जम तरि तक ते तक जम दरित जम तजम तक जम दरित जम तजम तक के तत जम तक दिम्मि तारिकु धनकु धनकु जनकु गनकु तोंकु पुंदरि करत कर कर तोम तक दिन नम तद को तक जन को कुप तक ट कुप तक तद दिन को तक जन को तद दिन कर तक तद दिन तंग तद दिन न तंग कर तक तद दिन न तंग तद जन तक दिन नम तद को तक जन को कुप तक ट तद दिन को तक जन को तद दिन दान दान तक ट तक ट तक ट देख तक तक दिन दान दान तक ट तक ट तक ट देख तक तक दिन तक दिम दिम तक ट तक दिम दिम तक ट तक दिम तक दिम तलांग चूम कर तक तुम तलांग चूम कर तक तुम तलांग चूम कर तक तुम